ओ साई तुम हो जहां हमारी खुशियां है वहां हमारी, हर दिल की अरमान हो तुम, जहां भी हम जाए साई वहां तुझको पाए, यही है हमारी दिल की दुआ।

0: न कुछ लेके चलेंगे।
1: क्या बात है,
0: किसा है किस्मत है जो खुदा का कभी दीदार हो जाए तो हम जैसे गुनाहगारों का बेड़ा पार।

ਸੋਈ ਕਰਮ ਕਮਾਵੈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਫੁਰਮਾਏ ਜਾਂ ਕੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਜਗਦੀਸ਼ਰ ਤਿੰਨ ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਨ ਜਿੱਤਾ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜੀਆੜਾ ਬਲਿਹਾਰੀ ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਨਿਰਗੁਣ ਰਾਖ ਲਿਆ ਸੰਤਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਤਿਗੁਰ ਢਾਗ ਲਿਆ ਮੋਹੇ ਪਾਪੀ ਪੜਦਾ ਢਾਕਨ ਹਾਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਹਮਾਰੇ ਜੀ ਪ੍ਰਾਣ ਸੁਖਦਾਤੇ ਅਬਨਾਸੀ ਅਬਗਤ ਸਵਾਮੀ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਬਿਦਾਤੇ ਉਸਤਤ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਏ ਤੁਮਾਰੀ ਕੌਣ ਕਹੈ ਤੂੰ ਕਦ ਕਾ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤਾਂ ਕਹਿ ਬਲਿਹਾਰੀ ਮਿਲੈ ਨਾਮ ਹਰ ਨਿਮਕਾ ਕੇਦਾਰਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਘਰ ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੇਰੇ ਮਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ਨਿਤ ਗਾਵੀਐ ਰੇ ਆਗਮਾ ਗੋਚਰ ਨਾ ਜਾਈ ਹਰ ਲਖਿਆ ਗੁਰਪੂਰਾ ਮਿਲੈ ਲਿਖਾਵੀਐ ਰੇ ਰਹਾਓ ਜਿਸ ਆਪੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਸਵਾਮੀ ਤਿਸ ਜਨ ਕਹੋ ਹਰ ਲਿਵ ਲਾਵੀਐ ਰੇ ਸਭ ਕੋ ਭਗਤ ਕਰੇ ਹਰ ਕੇਰੀ ਹਰ ਭਾਵੈ ਸੋ ਥਾਏ ਪਾਵੀਐ ਰੇ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਅਮੋਲਕ ਹਰ ਪਹਿ ਹਰ ਦੇਵੈ ਤਾ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੀਐ ਰੇ ਜਿਸਨੋ ਨਾਮ ਦੇ ਮੇਰਾ ਸਵਾਮੀ ਤਿਸ ਲੇਖਾ ਸਭ ਛੁਡਾਵੀਐ ਰੇ ਹਰ ਨਾਮ ਆਰਾਧ ਹੈ ਸੇ ਧਨ ਜਨ ਕਹੀਐ ਤਿਨ ਮਸਤਕ ਭਾਗ ਤੁਰ ਲਿਖ ਪਾਵੀਐ ਰੇ ਤਿਨ ਦੇਖੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਬਿਕਸੈ ਜਿਉ ਸੁਤ ਮਿਲ ਮਾਤ ਗਲ ਲਾਵੀਐ ਰੇ ਹਮ ਬਾਰਕ ਹਰ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਮੋਕੋ ਦੇਹੋ ਮਤੀ ਜਿਤ ਹਰ ਪਾਵੀਐ ਰੇ ਜਿਉ ਬਛੜਾ ਦੇਖ ਗਊ ਸੁਖ ਮਾਨੈ ਤਿਉ ਨਾਨਕ ਹਰ ਗਲ ਲਾਵੀਐ ਰੇ ਕੇਦਾਰਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਘਰ ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੇਰੇ ਮਨ ਹਰ ਹਰ ਗੁਣ ਕਹੋ ਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨ ਤੋਏ ਤੋਏ ਪੂਜੋ ਇਨ ਬਿਦ ਮੇਰਾ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਲਹੋ ਰੇ ਰਹਾਓ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਵਮਾਨ ਬਿਖੈ ਰਸ ਇਨ ਸੰਗਤ ਤੇ ਤੂੰ ਰਹੋ ਰੇ ਮਿਲ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕੀਜੈ ਹਰ ਗੋਸ਼ਟ ਸਾਧੂ ਸਿਉ ਗੋਸ਼ਟ ਹਰ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸਾਇਣ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰਸਾਇਣ ਹਰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰਾਮ ਰਮਹੁ ਰੇ ਅੰਤਰ ਕਾ ਅਭਿਮਾਨ ਜੋਰ ਤੂੰ ਕਿਛ ਕਿਛ ਕਿਛ ਜਾਣਤਾ ਇਹੋ ਦੂਰ ਕਰੋ ਆਪਣ ਗਹੋ ਰੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਹੋ ਹਰ ਦਇਆਲ ਹੋ ਸੁਆਮੀ ਹਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਧੂਰ ਕਰ ਹਰੇ ਕੇਦਾਰਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਘਰ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮਾਈ ਸੰਤ ਸੰਗ ਜਾਗੀ ਪ੍ਰੇਰੰਗ ਦੇਖੈ ਜਪਤੀ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨੀ ਰਹਾਓ ਦਰਸ਼ਨ ਪਿਆਸ ਲੋਚਨ ਤਾਰ ਲਾਗੀ ਬਿਸਰੀ ਤਿਆਸ ਬੇਡਾਨੀ ਅਬ ਗੁਰ ਪਾਇਓ ਹੈ ਸਹਿਜ ਸੁਖਦਾਇਕ ਦਰਸ਼ਨ ਪੇਖਤ ਮਨ ਲਪਟਾਨੀ ਦੇਖ ਦਮੋਦਰ ਰਹਿਸ ਮਨ ਉਪਜਿਓ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਨੀ ਕੇਦਾਰਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਘਰ ਤੀਜਾ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀਨ ਬਿਨਾਂ ਸੁਨ ਦਇਆਲ ਪੰਚ ਦਾਸ ਤੀਨ ਦੋਖੀ ਏਕ ਮਨ ਅਨਾਥ ਨਾਥ ਰਾਖੋ ਕਿਰਪਾਲ ਰਹਾਓ ਅਨਕ ਜਤਨ ਗਮਨ ਕਰੋ ਖਟ ਕਰਮ ਜੁਗਤ ਧਿਆਨ ਧਰੋ ਉਪਾਵ ਸਗਲ ਕਰ ਹਾਰਿਓ ਨੈ ਨੈ ਹੁਟੈ ਬਿਕਰਾਲ ਸਰਨ ਬੰਦਨ ਕਰਨਾ ਪਤੇ ਭਵ ਹਰਨ ਹਰ ਹਰ ਹਰ ਹਰੇ ਏਕ ਤੂੰ ਹੀ ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਪ੍ਰਭ ਚਰਨ ਨਾਨਕ ਆਸਰੋ ਉਦਰੇ ਪਰਮ ਮੋਹ ਸਾਗਰ ਲਗ ਸੰਤਨਾ ਪਗ ਪਾਲ ਕੇਦਾਰਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਘਰ ਚੌਥਾ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਰਣੀ ਆਇਓ ਨਾਥ ਨਿਧਾਨ ਨਾਮ ਪ੍ਰੀਤ ਲਾਗੀ ਮਨ ਭੀਤਰ ਮੰਗਨ ਕਉ ਹਰਦਾਨ ਰਹਾਓ ਸੁਖਦਾਈ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਰਾਖੋ ਮਾਨ ਦੇਹੋ ਪ੍ਰੀਤ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਸਵਾਮੀ ਹਰ ਗੁਣ ਰਸਨ ਬਖਾਨ ਗੋਪਾਲ ਦਇਆਲ ਗੋਬਿੰਦ ਦਮੋਦਰ ਨਿਰਮਲ ਕਥਾ ਗਿਆਨ ਨਾਨਕ ਕਉ ਹਰ ਕੈ ਰੰਗ ਰੰਗੋ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸੰਗ ਧਿਆਨ ਕੇਦਾਰਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ
हर के दर्शन को मन चाओ, कर कृपा सत्संग मिलावो, तुम देवो अपनो नाओ रहाओ। करो सेवा सतपुरख प्यारे, जत सुनिए तत मन रहसाओ, वारी फेरी सदा कुमाई, कमन अनूप तेरो ठाओ। सर्व प्रतपालै सगल संभालै, सगलिया तेरी छाओ, नानक के प्रपुरख विदाते, घट घट तुझै दिखाओ। केदारा महला पंजवा, प्रे की प्रीत प्यारी, मगर मन मैं चितवो वासा, नैनो तार तुहारी रहाओ। ओए दिन पहर मूर्त पल कैसे, ओए पल करी किहारी, खूले कपटो तबट बुझ तृष्णा, जीवो पेख दरसारी। कौन सो जतन ओ पाओ कनेहा, सेवा कौन बिचारी, मान अवमान मोह तज नानको, संतै संग उदारी। केदारा महला पंजवा, हर हर हर गुण गावो, करो कृपा गोपाल गोबिंदे, अपना नाम जपावो रहाओ। काढ़ लिए प्रभयान बिखैते, सासंग मन लावो, भ्रम पो मोह कट्यो गुरबचनी, अपना दर्श दिखावो। सब की रेन होए मन मेरा, अहं बुद्ध तजावो, अपनी भगत देह दया लावड़, भागी नानक हर पावो। केदारा महला पंजवा, हर बिन जन्म अकार्थ जात, तज गोपाल आन रंग राचत, मिथ्या पहरत खात रहाओ। धन जोबन संपै सुख भुगवै, संग ना निभत मात, मृग तृष्णा देख रचियो बावर, द्रुम छाया रंग रात। मान मोह महामद मोहत, काम क्रोध कै खात, कर गै लेहो दास नानक कहो, प्रभ जियो होए सहात। केदारा महला पंजवा, हर बिन कोई न चालस साथ, दीना नाथ करना पत स्वामी, अनाथा के नाथ रहाओ। सुत संपत बिखिया रस भुगवत, नह निबहत जम कै पाथ, नाम निधान गाओ गुण गोबिंद, उधर सागर के खात। सरण समरथ अकाथया गोचर, हर सिमरत दुखलाथ, नानक दीन तूर जन बांशत, मिलै लिखत तुरमाथ। केदारा महला पंजवा, घर पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, बिसरत नाहे मन ते हरी, अब एह प्रीत महाप्रबल पई, आन बिखै जरी रहाओ। बूंद कहां त्याग चात्रक मीन, रहत ना करी, गुण गोपाल उचार रसना, टेव एह परी। महानाद कुरंक मोहयो, बेद तीखन सरी, प्रभ चरण कमल रसाल नानक, गाठ बांध तरी। केदारा महला पंजवा, प्रीतम बस्तो रिदमै खोर, भरम पीत निवार ठाकरो, गह लेहो अपनी ओर रहाओ। अदक गर्त संसार सागरो, कर दया चारो पहोर, संत संग हर चरण बोयथ, उदर ते लै मोर। गर्भ कुंट मैं जिने तारियो, नहीं बिखै मन मैं होर, हर सकत सरन समरथ नानक, आन नहीं निहोर। केदारा महला पंजवा, रसना राम राम बखान, गुण गोपाल चार दिन रैन, पै कलमलहान रहाओ। त्याग चलना सगल संपत, काल सिर पर जान, मिथन मोह दुरंत आसा, झूठ सर परमान। सत पुरख्या काल मूर्त, हृदय तारो ध्यान, नाम निधान लाभ नानक, बसते परवान। केदारा महला पंजवा, हर के नाम को आधार, काल कलेसना कछ व्यापै, संत संग व्यवहार रहाओ। कर अनुग्रह आप राखियो, न उपजतो बेकार, जिस प्राप्त होए सिमरै तिस दहत न संसार। सुख मंगल कल आनंद हर जस, सुख मंगल आनंद हर हर, प्रभ चरण अमृत सार, नानक दास शरणागति, तेरे संतना की शार। केदारा महला पंजवा, हर के नाम बिन त्रिग स्रोत,
जीवन रूप विसार जीवै तेह कत जीवन होत रहाओ। खात पीत अनेक बिंजनु जैसे पार बहक खोत, आठ पहर महाश्रम पाया जैसे बिरख जंती जोत। तज गोपाल जे आन लागे से बहु प्रकारी रोत, कर जोर नानक दान मांगै हर रखो कंठ परोत। केदारा महला पंजवा संतै तूर ले मुख मली, गुणा अचित सदा पूर्ण नै दुख दे आपै कली रहाओ। गुरबचन कार्य सर्वपूर्ण ईत उतना हली, प्रभ एक अनक सर्वत पूर्ण दिखै अगन्ना जली। गह पुजा लीनो दास अपनो ज्योत ज्योति रली, प्रभ चरण सरन अनाथ आयो नानक हर संग चली। केदारा महला पंजवा हर के नाम की मन रुचै, कोट सांत आनंद पूर्ण जलत शांति बुझै रहाओ। संत मार्ग चलत प्राणी पतत उदरै मुचै, रेण जनकी लगी मस्तक अनक तीर्थ सुचै। चरण कमल ध्यान पीतर कड़कटै स्वामी सुजै, शरण देव्या पार नानक बहुर जम नहीं लुजै। केदारा शंत महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद, मिल मेरे प्रीतम प्यारिया रहाओ। पूर रहा सर्वत्र मैं सो पुरख विधाता, मार्ग प्रभ का हर किया संतन संग जाता। संतन संग जाता पुरख विधाता, काट काट नदर निहालिया। जो सरनी आवै सर्व सुख पावै, तिल नहीं पन्नै कहलिया। हर गुणित गाए सह सुभाए, प्रेम महारस माता। नानक दास तेरी शरणाई तू पूर्ण पुरख विधाता। हर प्रेम भगत जन बेदया से आन कत जाही, मीन बिशोहा नास है जल बिन मर पाही। हर बिन क्यों रही है दुख किन सही है, चात्रक बूंद प्यासिया। कबरैन बिहावै चकवी सुख पावै, सूरज करण प्रगासिया। हर दर्श मन लागा दिन सुभागा, अंदन हर गुण गाही। नानक दास कहे बेनंती कत हर बिन प्राण टिकाही। सास बिना ज्योंदे होरी कत सोभा पावै, दर्श बिहुना साध जानो खिण टिकना आवै। हर बिन जो रहना नरक सो सहना, चरण कमल मन बेदया। हरसक बैरागी नाम लिव लागी, कतो ना जाए नखेदया। हर स्यो जाए मिलना साध संग रहना, सो सुख अंक नाम आवै। हो कृपाल नानके स्वामी हर चरना संग समावै, खोजत खोजत प्रभ मिले हर करना तारे। निर्गुण नीचा नाथ मैं नहीं दुख बिचारे, नहीं दुख बिचारे पूर्ण सुख सारे। पावन बिरद बखानिया भगत वछल सुन अंचलो गहया। कट कट पुर समानिया सुख सागरो पाया, सह सुभाया जन्म मरण दुख हारे। कर गह लीने नानक दास अपने राम नाम उर हारे। राग के दारा बाणी कबीर जियो की एक ओंकार सतगुर प्रसाद, उस्तत निंदा दो बिबरजत तजो मान अब माना। लोहा कंचन सम कर जानै ते मूर्त भगवाना। तेरा जानु एक याद कोई, काम क्रोध लो मो बिरबरजत हर पद चीनै सोई रहाओ। राज गुण तम गुण सत गुण कहिऐ, एह तेरी सब माया। चौथे पद को जो नर चीनै तिन ही परम पद पाया। तीर्थ वर्त नेम सो संजम सदा रहै निकामा, तृष्णा अर माया परम चूका चितवत आत्म रामा। जेह मंदर दीपक प्रगासिया अंधकार तह नासा, निरपौ पूर रहे परम पागा कह कबीर जनदासा। किन्ही बनजिया कांसी तांबा, किन्ही लौंग सुपारी, संतो बनजिया नाम गोबिंद का ऐसी खेप हमारी। हर के नाम के व्यापारी हीरा हाथ चढ़िया निर्मोलक, छूट गई संसारी रहाओ।
साचे लाए तौ सच लागे, साचे के व्यवहारी साची बस्त के भार चलाए, पहुंचे जाए पंडारी। आपै रतन जवाहर मानक, आपै है पासारी, आपै दह दस आप चलावै, निचल है व्यापारी। मन कर बैल सुरत कर पेंडा, ज्ञान गुण पर डारी, कहत कबीर सुनोरे संतहो निभी खेप हमारी। री कलवार गवार मूड मत, उल्टो पवन फेरावो, मन मत वार मेर सर पाठी, अमृत तार चुआवो। बोलो पहिया राम की दुहाई, पीवो संतो सदा मत दुर्लभ, सहजे प्यास बुझाई रहाओ। तह बिच पाओ पाए को बूझै, हर रस पावै पाई, जेते कट अमृत सब ही मैं, पावै सह पियाई। नगरी एक नौ दरवाजे, तावत बरज रहाई, त्रिकुटी छूटै दसवां दर खूलै, तमन खीवा पाई। अपह पद पूर ताप तह नासे, कह कबीर बिचारी, उबट चलन ते एह मद पाया, जैसे खोंद खुमारी। काम

0: राम नाम बिनेउर जिमर है, डांड कमंडल सिखा सूत धोती, तीर्थ गवन अत भ्रमण कर है, राम नाम बिन सांत न आवै, जप हर हर नाम सो पार पर है, जटा मुकट तन पसम लगाई, बस्त्र छोड़ तन नग्न पया, राम नाम बिन तृप्त न आवै, किरत कै बांध है पेख पया, जेते जी जंत जल थल महियल, जतर कतर तू सर्ब जिया, गुर प्रसाद राख ले जन को, हर रस नानक झोल पिया।
1: You are listening to Radio Sai Global Harmony. Radio Sai brings to you every day the teachings and the universal message of love of Bhagwan Sri Satya Sai Baba.
2: Radio Sai now offers you some devotional Christian music.